हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां, आरता मैंने मंगता। जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी फाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री वाहे।

काल स्मरत है करते मैं तुझ बिन अवर न कोई तुझे आपे शिष्ट सजिया आपे कोई सब इको शब्द वर्तदा जो करे सोहोई जो करे सोहोई वड्याई गुरमुख दे प्रभ वड्याई

प्यारा लिखा है चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी है बाहें जिना दी पकड़ी है सिर दी जय बाहें ना छोड़ी है असि जकारा बुलावे सारे उच्ची वाह करनी है सच्चे पातशाह साड़ी वाह।

0: नगन फिरत जो पाए जोग,
1: बन का मिरग मुकत सब होग।
2: गुरबाणी बार बार समझाए कह रहे ने पासा, जे इस तरह जोग जिस परमात्मा इस तरह मिल जाता ते मिरग भी इस तरह नंगे ही जंगल दे विच घूम रहे ने फिर रहे ने। कहते ने

0: Chapter 1000 se ma raju baba ai pade san main pucha kya lage badi lambi katha mata nandi hai
1: ha sun harnakshna da ek bada shaktishali raja si unne bhagwan di bhakti karke ek vardhan liya ki na woh dine marega na rati marega na andar marega na bahar marega na manukh ko lo ना किसी जानवर को लो। भगवान का वरदान लेके वो आज से भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नू भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नू तपते थम ना जफे पान का हुक्म दिता। ते प्रहलाद के दिल विच आवाज आई, पाले तत्ते थमा नू जफिया आपके तेनू रम रख लो। प्रहलाद ने थम ना जफी पा ली, पर उदा वाल भी रिंगा ना होया। गुस्से विच आके राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी मां, भगवान दा जाप करांगी।
2: नहीं, मेरी मेहनत विच मेरी औलाद नू पुठे पार पाया जा रहे। अज तो बात फिर करी ऐसी गल कीती तो मैं ऐसी सलाह दियांगा कि लोग हैरा किशम नू भी भुल जाएंगे।

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। और मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

0: जीवन सौ रुपये। शराबी करती देने तो पहले सौ बारी सोच नहीं ओ ना होवे जिस हाथ विच वीरवार दी बच्ची ने इस संगत दी बच्ची ने माला से गुटका फड़ना सी उस हाथ नाल शराब ना परोस के देनी पवे घर दे उस हाथ नाल मास ना बनाना पवे बनाना ही पऊजे दे देंगे। किन्ने जीवां दी बदसीस किथे जाएगा। आपां तीजी गल रखती आ नहीं दोवें चीजां फिर मैं कापी ते लिखियां सी कल्ला बैठा सी मैं कहा जवाब लिखी है हुण मैनूं चौथी तक याद है ते चौथा मैं कहा जी जय माता नहीं पाणी
1: मेरी वाह
0: है जी तकरीबन 80 पैसे तो भज जाते कहते जी असं होर किसी को लावा करा लांगे आ साढ़े को नहीं चंगी गल की शर्त रखनी कोई घबराहट नहीं कट के लोड़ है आनंद संस्कार सुधर जान लोड़ है जरूरी है बहुत जरूरी है। जिमें अगे तुम पता नहीं पिछले वीरवार के उसको पिछले वीरवार बचन सुनिया सी ना भी एक बंबई का शरीर लड़के का विआह होया ते अगले दिन उन्हें शुकराना जड़ा पार्टी वो किस रूप च कीती है सब रिश्तेदारा नू सद्या पार्टी से सब नू सद्या शुकराने से दो कीर्तनी जथे बुला के कीर्तन करा के और गुरु कियां संगतां नूं लंगर रूप दी लंगर छका के शुकराना कीता है। गुरु नानक मेरी घर दी नूह ने भी शब्द पढ़िया चलो टेबलां ते भी देना होवे पार्टी करनी कई चीजां दा कंट्रोल बेतहाशा लेट का कंट्रोल बेतहाशा नचण का कंट्रोल बेतहाशा गंदगी के गीतों का कंट्रोल यह शब्द लगे हो की कहते लोड़ बाकी सानू पूरा नहीं पता थानू ज्यादा पता होगा जो अभी जाने उदो शब्द ला देंगे उदो ला देंगे तकरीबन देखिया हमने भी थोड़े गए हैं दिन पे पहले तो काफी शोर शराबा लगा सी दो मिनट बाद वो शब्द लग गए शब्द लगा सी बाबर मेरा बड़ समर्था करण कारण प्रभा असी जो सगन देना सी कोई होर देना सी सरोपो पाया जो कारज सी जिस तरह ही पार्टी सी वो जड़ा हाउस सी उहदा दफ्तर बाहर सिरे ते काफी हाउस वड्डा सी वो जो बाहर आए सानू उहना दफ्तर च पाया भी कुछ छक के जाओ वो पिछों सारे समझे भी चले गए है असीं दफ्तर च बैठे सी ते फिर गाने शुरू विचों बंदा भज्जा गया ओ ये नहीं गए लगा रहे मैं कहा वेख बाबा भाई जदों मैं क्या हूं कोई होर आऊगा कीर्तनिया या कोई होर जिन्हों चलो सतपुरे का जिमें होर किस तरह का सत्कार देंगे मैं क्या फिर बदला देंगे भाई तुम आए हो फिर शब्द गए हो फिर असं उत्तर बढ़ना ऐसे भी अरदास करो साढ़े व्याह दियां पार्टियां भी गुरमत वर्गियां बन जान गुरु प्यारे हो इनकलाब लियाओ इनकलाब तुसी नहीं लियाना किन्ने लियाना कितों तो गल शुरू होनी है ये गल कोई उन्होंने होर तो थोड़ी शुरू होगी संगत रूप चो ही शुरू होगी अनंत संस्कार जिन्ना भी हो सके सुधार वाल अज ही एक बच्ची की गल हो रही थी लावां दी ते कहण लगे किवें मैं कहा मेरा तो दिल करदा सवेरे लाओ आसाई वार दे दीवान जथे सदो तीन चार माता कोलां दे हुण के रखो अठ बजे लावां ते अमृत वेले दी आसाई वार लावां मैं कहा मेरे ख्याल नाल विच गुरु वसेगा आखो सतनाम गुरु दियां खुशियां भी बख्शीश।

जीव जंत उस पानी अंदर रहने वाले हैं। फिर तेन उन्हों का पहाड़ से जरूर व्यापदा होगा, इतनिया नदियां नाले निरंतर चल रहे जिन्हों का कोई अंदाजा नहीं, कितना पानी ते सारा पानी फिर जिस समुद्र च जाके पैंदा उहदा कोई अंदाजा नहीं, फिर तैनूं उहदा भारत जरूर व्यापदा होवेगा। ते भाई साहब जी ने यह सवाल किया।

जीव अमृत वेले उठ ते साहब आखदे ने अमृत वेले उठ के स्नान कर। मेरा स्नान ही नहीं करना, इशनान करके उस परमात्मा अकाल पुरख की भक्ति कर, उस प्रभु का सिमरन कर। फिर प्रभु का सिमरन करेगा तो होगा कि कर।

पावो सिमर प्रभु अपना अपने प्रभु नु सिमर उस परमात्मा दे नाम दी आराधना कर ते जीव वेख फिर सिमरन विच सुख कितने ते साहिबा ने अमृत वेला क्यों चुने जीव कहिंदा है महाराज होर भी किसे टाइम ते नाम जपे ही जा सकदा है ना पर सैम आखदे ने नहीं जीव अमृत वेला क्यों चुनेंगे अमृत वेले नाम जपन लई क्यों सतगुरु ने हुक्म कीता है कहिंदे ने जो अमृत वेले बिरती लगदी उस तो बाद नहीं लगदी क्योंकि आगाध ही प्रभात तो इस संसार दी वेख लो ए नहीं कि कितने नाम दी ही कहेंगे ये सारे संसार दी आगाध जेड़ी ये नाम तो है अमृत वेले तो प्रभात तो है ते जीव तू प्रभाते क्यों नहीं उठदा तू प्रभाते ही उठ के परमात्मा दा नाम जप नाम दे विच लीन हो के ते वेख कितना सवेरे आनंद आउंदा है कितना मन जुड़दा है कितना एकाग्र चित हुंदा है साहिबा ने फरमान कीता है कि जीव अमृत वेले ही उठ के नाम जपना तेरे वास्ते ठीक है।

সিমর সিমর সিমর জন সোয়ে নানক কর্ম প্রাপ্ত হয়ে সিমর প্রভ আপনা কর ইসনান সিমর প্রভ আপনা সিমর প্রভ আপনা পর অমৃত বেলে উঠনাই তে মুশকিল জাগনা মুশকিল হ্যাঁ पर ऐसा नहीं कि अमृत वेले उठने वाले नहीं है कौन पिन्नी रैनड़िए चमकण तारे जागे संत जिना मेरे राम प्यारे राम दे प्यारे अमृत वेले उठ पेंगे इशनान करते ने इशनान करके परमात्मा की आराधना में जुड़ जाते कौन राम प्यारे सदा जागते वो तो सौंदे ही नहीं जागते देखते नहीं कदों अमृत वेला हो उठ के परमात्मा की दरगाह विच जुड़ जाई दरगाह विच पहुंच जाई चरणा दे विच लीन हो जाई कई इशनान करते नहीं अमृत वेले उठ पैंदे पर किसी होर पासे लग जाने अखबार पढ़ ली शैल चले गए ठीक है मनुख ए भी तेरे वास्ते जरूरी है पर आत्मक वास्ते नाम जपना जरूरी सब तो पहले अमृत वेले उठ के इशनान करते नाम जुड़ जा साहिबा ने आखे कर इशनान सिमर प्रभ अपना कर इशनान सिमर प्रभ अपना उठ फरीदा उजूसार फरीद साहब ने कितना सुंदर ख्याल दिता फरीद साहब आखते ने फरीदा अमृत वेले उठ पै जो मुसलमान नमाज पढ़न लगते ने पहले पांच स्नाना करते हथ पैर धोते उसनू आखते ने उजू पाड़ पवित्र होना उठ फरीदा उजू साज सुबह नमाज गुजार सुबह की नमाज पढ़

0: ある。
1: कैसा ख्याल?
0: जेड़े सिर साई दे अगे निवदे नहीं, जेड़े मन चुकदे नहीं, जेड़ी रसना नाम जपदे नहीं,
1: कहिंदे रसना नूं भी कट दे,
0: ते जेड़ा सिर चुकदा नहीं परमात्मा दे अगे कहिंदे सिर भी कट दे।